0: ये यमका ना
1: नेगो ओइ लचरा उका ना
0: किता पे याम
1: ओन चला यंग नेगो
0: के याकिरम ननम नन सर्विसेस पीपीए
1: हेन हयारे इबुगिनि किता नन कांगा लेक्चर दिया के ननम आ देता किन कोन मार्केटिंग एट पीपीए टॉप डॉट के याई
0: के मैसेज न कोन नन फेसबुक पेज पीपीए ए ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिकेशंस अथॉरिटी के पीपीए मेरी एफएम 89.9 के कुबुनि कोन नन बेन देता किन कोइरन दे टेलीफोन नंबर ए ओनो व देनुआ किया देनुआ आ किया तो वाना नि मेवा किया किन फोन रो कोन नन अकाउंट पीपीए पाइरि किन निकारि न तंग तंग Kang Ah, ane nana search box BPA hari ekatau royang ibu kim.
1: Weapon.